0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: लॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन

0: गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
10: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के

0: बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था, अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे, भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था, अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा, अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे, भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी

0: होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
1: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे

0: दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है।

पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए

लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर

पहुंची, फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे

0: आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूँगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहाँ पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जा

0: करके हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा,
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना, और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कन्फ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कन्फ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
0: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार
1: की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफ़ी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो

0: अपू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
1: अच्छा
0: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन था
1: हाँ, वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह,
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से, तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी बिल्कुल
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा, और इलाहाबाद में ही काफ़ी

0: कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहाँ हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा
0: हाँ तो ये सब चीज़ें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई ख़त्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आज़ाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफ़ी, मतलब वो आंदोलन काफ़ी तेज़ हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज़्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी।
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
1: जी
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज़ हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग। और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो

0: भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
0: सही बात है,
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो पूरी
1: गाना
0: नहीं होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी,
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो

0: कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे में
1: दिया।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार की
1: गीत हुए।
0: हालत क्या हो गई
1: हाँ
0: भगवान,
1: हाँ
0: कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी।
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊँ,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
1: सीरीज
0: है।
1: है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही
0: गीत दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी

0: में सुनने को मिलती है और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है। तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देख तेरे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको कि देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा जी
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे
0: चुप
1: वो
0: करा
1: कराती थी कि
0: दी
1: नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और
0: थी।
1: तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं। अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों ये सब में कुछ लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।
2: आकाशवाणी विविध भारती।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of Class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony,